कोई पाओ नहीं को डर नहीं कोई वैर नहीं को प्यार नहीं को दोस्त नहीं जदों असीं चुप तो बाहर आवांगे सानू संवाद दी लोड़ होवेगी संवाद कदे कदे हुंदा है किसे किसे नाल हुंदा है गलबात भावें रोज़ हुंदी रहे गलबात भी ना संभव होवे फिर बहस हुंदी है बहस हुंदी है ते बहस हौमे नू जन्म दिंदी है बहस विच जित हार हुंदी है संवाद नहीं कदी कदी मैं सोचता कि बहुत सारे संत महात्मा लोग इस सफर क्यों करते ने एक थर टिक के क्यों नहीं बैठते वो सफर इसलिए करते ने कि वो एक थां तो अगली थां ते जीवन का पथ लभ के अपने विचारां दी सांझ पाउंदे ने